प्रिय मयूर कविला हुक जय मसी और नमस्कार। मैं अपना हुकन के सामु फे महात्मा प्रसाद चौधरी आगे लाटू। आज हमरा व्यवस्थापक कना शीर्षक में वचन हेर जाए। पहिल कोरिन्थी 4 अध्याय में परमेश्वर में विश्वास योग्यता बारे में बात बताएगा। परमेश्वर कसी का हमार में विश्वास करता कना बात फिर बताएगा। पहलो कोरिन्थी 4 अध्याय की 1 पद मसी का कहत हम हमन परमेश्वर का ख्रीस का सेवक समझ पर्था। हमन परमेश्वर का रहस्य बात प्रकट करना जिम्मा दे गेल बा। असीन काम में जिम्मा पायल सेवक विश्वास योग्य हुई पर्था। उ रहस्य बात चाहिए का हुई जुन यहाँ बताएल बा। परमेश्वर का मुक्तिक बात जुन एक समय में हुई कना बताएल बा। ई चाहिए एकदम रहस्य बात हो। तर आमीन सब नाई परमेश्वर का योजना यहूदी मन हुकन बीच में अही जे मसीहा हुई ता कहीं बताएल रहा। जे सारा मन को डार करता रही जैकर नाव येसु रही कहीं बताएल रहा। ई येसु जे क्रूस में गैला और दुख भोगला उमूला वहां अपन जीवन अर्पण कैला ताकि जे वहां में विश्वास करी वो अनंत जीवन पाई सके। जब अपना परमेश्वर में आईबी अपना सारा पाप वहां में क्षमा हुई वहां में आईना बात अपना पश्चाताप कैना कैक कठी अपना जीवन में कैलक पाप में पश्चाताप कर भी और अपना जीना जीवन से अपना लौट भी अपना कैलक सारा खराब काम छोड़ भी अपना जीवन का प्रभु कैका ख्रीस्त मा अपन जीवन में बलैबी और मुक्तिदाता कैके स्वीकार कर भी वहां मा लौ जीवन जीना कैका कवि कलश से अपना वहां मा मुक्ति पैबी। ये चाहिए एकदम भार रहस्य बात। आज संसार में ध्यान मन उग्र बात जे ई बात ख्रीस्त येशु दोसरो आगमन सम ई योजना हा जाना नहीं पी वो आप ई बात वहां विश्वास कर मन उग्र बोक का नैंग था वो ई बात अब कौन मेरी तरीका से नुका का नहीं रही गिल हो। आप हमरा ई बात जत्रा ध्यार मन हुकन फिर बताई सकती ई बात मद्देनजर करती ई बात का निचोड़ यह हो कि जे रहस्य बात में इच्छा जनाइल बा ऊ चाहे विश्वास योग्य बनना बारे में प्रमाणित कर ही पड़ना बा। वही बात हमरा विचार करी कहीं का मैं कह चाह कि ख्रीस्त एक विश्वासी हुई लकोर से अथवा ख्रीस्त का एक विश्वासी हुई लकोर से हमरा हमार विश्वास वहां में कसी का दिखाई सके वहां में हमार विश्वास कसी का प्रमाणित कर सकती बात दिखाई के लाग हमारा ध्यान तरीका से कह सकती। पहली बात चाहिए हमार व्यक्तिगत नैतिकता से दिखाई सकती जिसका हमारा बताएल रहा है कि जब हमारा ख्रीस्त में विश्वास करती कल से हमारा हमार पापी जीवन छोड़ती वो हमारा परमेश्वर में मजा जीवन का अभ्यास करती ख्रीस हमार लाग जा कैला वहां मा वाकर लाग धन्यवादी बनती और मन होकर एकदम क्रिस्या कर था और मन होकर एकदम ईश्वरी अभिभावक बैठा जुन महत्वपूर्ण रहा। हमार विश्वास हमार लड़का बच्चन में सर थी ओकना लड़का बच्चन में फिर ख्रीस्त येशु संग नेंगाई नेंगी कना बाटम हमरा विश्वास कर थी हुकरा विश्वासी नक लाग ई बात एकदम महत्वपूर्ण बात हो और विश्वासी हुकरा सोचते कि परमेश्वर में विश्वास योग्य होइन बात चाहिँ एकदम महत्वपूर्ण बात हो। जब ई बात वहां वचन अध्ययन का संदर्भ में था हमरा एक विद्यार्थी ऐसा खुलक हो का करे कि ई चाहिँ चेला हुइन अर्थ चाहिँ हो येशु हम पछ्याल पहले मन हुकरा चेलाओ हुकरा हुई ओ उहर से आज चेला हुकरा ओ मन हुकरा हुई जे वहां वचन अध्ययन मनन वहां के बारे में जाना खोजना वहां के बारे में वहां बुद्धि में वहां जस्ता बना खोजना चाहिए वो जे ख्रीस्त का सुसमाचार है सुनाई ख्वाजट वो ख्रीस्त का गवाही है दिहक ख्वाजट वो चाहिए चेला ई काम चाहिए येशु हमारे जीवन में हुआ के वहां चढ़ वहां मट्टी 28 अध्याय में बताएल बात हमारे जीवन में हुआ के वहां चढ़ की हमारा सारा जाति मन उग्रा चेला बनाए कना वहां की इच्छा हो वह वर्ष सब डगर चाहिए वहां में विश्वास योग्य हुई ना डगर तर ई मध्य कौनो फे बाधा के रूप में नहीं हो इस सबको काम करल बा जाहिला से फे मैं आज विश्वास योग्य और भाग के बारे में बात बटो और भौतिक चार्ज में हमारा विश्वास योग्यता हाँ कसी का काम कर सक जाए कना बात हम दिहल बा जुन चार्ज हमन आशीष के रूप में दिहल बा उ चार्जक साथ हमरा का करती हमरा फाइल पैसा हाँ हमरा कसी का खर्चा करती परमेश्वर में विश्वास योग्य होना हो वहां से पहला आशीष में हमरा विश्वास योग्य होना ये एकदम आधारभूत बात वहां देलक चार्ज हमरा कसी का खर्चा करना फजूल खर्चा नहीं कहना और परमेश्वर में महीन देलक चार्ज हमें एकदम होशियारी के साथ प्रयोग कहना हो कि ताकि हमरा परमेश्वर का महिमा के लाग वहां के राज्य के लाग खर्चा कर सकी और मेरे से कह ब्याला हमरा हमार पैसा से परमेश्वर का आराधना करा पड़ता जब हमरा कौनो चार्ज या रुपया पैसा हाँ प्रयोग करती हमरा हमार फायदा के लागना ही हमार मजा कपड़ा के लागना ही हमार ऐस आराम के जीवन के लागना ही तर हमारो भौतिक चार्ज चाह आर्थिक चार्ज से परमेश्वर का राज्य में ध्यान आत्मा है जीतक लाग प्रयोग करा पड़ता ई काम चाहिए एक सेवक का काम
एक सेवा असीन काम कर ओवर से बारे में एक विचार करी रुपया पैसा हमारे एकदम चाहना चाज हो हमारा हमारा रुपया पैसा है केहरो खर्चा करती तो हमरे हमारा रुपया पैसा हाँ केहर प्रयोग कर लाठी कई का जब हमारा लेखा जोखा धरबी हमारा सहज हमार खर्च विवरण है हेर का ठहा कर से हमारा कमाल हमारा रुपया पैसा है कुन हेराई से हेरा कई का सहजा ठहा कर से क्रिश्चियन मन हुकर एकदम रहस्य बात परमेश्वर का वचन से बुझल बाट कि पैसा शक्ति चाहिए खर्च कहना शक्ति चाहिए नहीं हो व्यापारिक नीति चाहिए पैसा है खर्च कर प्रथा कना हुई था वो चाहिए गलत हो पैसा सही शक्ति कलक पैसा से पैसा कमाईना हो इन और मेरे से कह बेला अपना पक्ष में हो के ध्यान पैसा कमाईना हो तर विश्वासी हुकरा आकर विरोध करता का करे कि हरेक चार्ज हमन दिहल बा ताकि हमारा परमेश्वर का महिमक लागे आकर व्यवस्थापन करी वो से हमार मुख्य उद्देश्य चाहिए हमार ला ध्यान कमाईना नहीं हो तर हमारे प्रयोग करती क्रम में और जहां मजा प्रभाव पड़ना हो ताकि वो मनई हुकरा ख्रीस्त में आई सका मनई हुकरा परमेश्वर में धन्यवादी हुई अब विचार करी मनई हुकरा परमेश्वर में धन्यवादी हुई कि नहीं हुई कना बात है हेरना एकदम सजिल तरीका हो ओ ख्रीस्त यीशु में पहला जिम्मेवारी हाँ उकरा मजा से पूरा कर कि नहीं कर छुई तो बात है हेरना एकदम सजिल तरीका चाहिए उकरा परमेश्वर में देना भेटी देना आराधना चाहिए उकनक परमेश्वर है कुन प्रकार लेला बाटा कना आस्था जनाई यदि कौनो मन यहाँ परमेश्वर में देना काम नहीं करत कल से ऊ बात से यह प्रमाणित हुई था कि ऊ मन यहाँ विश्वास में कमजोर बा कि तो ऊ मन यहाँ विश्वास ही नहीं हुई थी आज ध्यान मने हुकरा रुपया पैसा है सही काम में प्रयोग कर नहीं सकता ओ मैं आग्रह कर चाहू कि हरेक विश्वासी मन हुकरा हमार भौतिक चार्ज है आर्थिक चार्ज है एकदम होशियारी साथ चलाई पड़ता एक चो विचार करी कौन मन यहाँ 1000 रुपया कमाइल कल से वहां 10% 100 रुपया परमेश्वर में दशांश आना ये मन यहाँ एकदम कमजोर गरीब वहां ध्यार जिम्मेवारी बाटिस रफे परमेश्वर में अपन दशांश लेकर आए एक विश्वासी यह काम द्वारा विश्वास में बहरना काम हुई था अवश्य फिर जब ध्यार पैसा रही कल से जब ध्यार चार्ज रही कल से ध्यार चार्ज हाँ परिपूरक का काम कर सकती था ओ परमेश्वर का राज्य में ढेर गरीब दुखी हुकन दिया ओ हुकना बीच में काम कर सकती था यदि कौनो मनैया थे एकदम ढेर धन संपत्ति कमाए ओ आकर 2-3% क्लिक परमेश्वर में आनल कल से मनैया एकदम दान से क्लिक दिया उसी मनई हुकन मार प्रश्न काबा कल से ऊ मनई हुकन विश्वास जाति खोटा यदि कौनो मनैया परमेश्वर में अपन भौतिक संपत्ति आना निश्चित कल से ऊ मनैया जाति का विश्वासी नहीं हुई ऊ मनई हुकरा उसी विश्वासी नहीं हुई देखावटी विश्वासी हुई यदि अपना जातिक रूप में यीशु है जन्मी कल से वहां अपना मन होकर मुक्ति लाख अनली करना बाट जन्मी कल से और संसार भर परमेश्वर का राज्य अपना सहयोग करक ठनवी कल से और सहयोग के कारण जन्मी कल से अपना वहां डांस से देना बात अथवा डांस से देना वाला मनैया नहीं बन अपना वहां राज्य विस्तार में एक सहयोगी बना सकती यदि अपना नैदेवी कल से अपना असल भंडारे नहीं हुई एक पद्मासी का कथा तुरहा हमन परमेश्वर का ख्रीस्त का सेवक समझा पर था हमन परमेश्वर का रहस्य बात प्रकट करना जिम्मा दे गए बा हमारा रहस्यमय बात बटवाल रही का परमेश्वर अपना भौतिक चार्ज नहीं देला जो चार्ज अपना अमीन समरला बाटी बात महीन योसेफ का बात याद दिया जुन बात उत्पत्ति 39 अध्याय में बताएल बा आई मई सबको जनक लाख पढ़ चाहू यहाँ 80 का लिखल बा वह ओर से वहां की निगाह योसेफ के ऊपर रहा योसेफ है हुकार सेवा सुसार करत ओहू कहीं अपन घर मुख्य कामदार बनाकर वो कहीं अपन थे रहल सब चाजक जिम्मा वहां देला ऊ अपन घर ओ अपन थे रहल सब चाजक मुख्य बनेला और बनाए समय थे से परमेश्वर हुकार खातिर मिश्रित घर में ध्यार आशीष देला एकदम मजा बात ती हो कि योसेफ कमुइया रल हा तरफ है परमेश्वर उहिना आशीष देला का करा कि ज्या चार्ज दिहल रहा उस चार्ज में एकदम बुद्धिमान तरीका से वाकर सदुपयोग योसेफ करल रल हा ई बात विकास यहाँ हुई ओ ई मेरी तरीका चाहिए आज हमरा हरेक विश्वासी मने हुकरा करा पर्ना बा परमेश्वर देला हरेक चार्ज हमरा लिह नहीं सकती वाकर सदुपयोग कर नहीं सकती वो वर्षे क्रिश्चियन हुकरे हमरा कुछ चार्ज कर नहीं सीखती हमारा मजा से सदुपयोग कर नहीं सीखती खाली खर्चा खर्चा के लिए करती भौतिक चार्ज में हम
हमार खर्च हुइथा जुन चाहिँ हमार ध्यार महत्व रह जीवित परमेश्वर भन्दा हाम्रो वाकर आराधना गर्थे वाकरमा बढी ध्यान दे ठिक कलस्ते ऊ चाहिँ एक मूर्ति पूजा हो कि धर्मशास्त्र मन बताए यदि अपने एक सच्चा विश्वासी हुई कलस्ते अपना परमेश्वर भौतिक परमेश्वर नै हुई कहीं अपने बुझ पर्था असिन काम विश्वासी मन हुकर नै गर्था यी चाहिँ एक खेल एक विश्वासी मनै आफन पैसा भौतिक चार्जमा फाक नै पर्था हमरा हमार विश्वास साँचो परमेश्वरमा धरा पर्था उहाँ हमन ज्यादिहल बात चार्ज हाम्रो एकदम मजासे मिलेन बारेमा हेर पर्था खेलवाड थन्न बात चाहिँ एक व्यवस्थित बिना बात नै हो यी चाहिँ बाचा हाँ औ प्रगति हाँ बेकार थन्न हो ओर से खेलवाड नै कैना हो काकर परमेश्वर महिन्देल चार्ज हम बेकार जाए नहीं दी हम हमारा वागर एकदम मजा से व्यवस्थापन करी कही वहां हमन हमार जीवन से चाहता ई बात हम अपना बुझी कही मैं कहक चाहत ओ परमेश्वर अपना हाँ देलक चार्ज हाँ अपना कसी का व्यवस्थापन करती वहां अपना हाँ यीशु मा मुक्ति देला बाटा तर अपना हाँ देलक हरेक चार्ज पैसा समेत परमेश्वर का आशीष हो वहां चाहता की सब चार्ज अपना एकदम होशियारी चार्ज बुद्धिमत्ता चार्ज वाकर प्रयोग करे अपना परमेश्वर का डेलक चार्जक व्यवस्थापक एक भंडारे हुई था अपना से ज्यादा उस सब चार्ज परमेश्वर अपना हाँ उधारी दे लगाता इस सब चार्ज एक दिन हेरा का चल दे जसका दोसरो पत्रुस तीन में बताएल बा ईसुक दोसरो आगमन नहीं हुई सम हमारा या कर सदुपयोग एकदम बुद्धिमान तरीका से कहना बा जब प्रभु ही वहाँ हरेक चार्जक लेखा हमन से लिए ही और वहाँ देलक हरेक चार्ज में हमारा कतरा ईमानदार हुई वाकर हिसाब किताब वहाँ करही आज की वचन द्वारा परमेश्वर अपना ध्यान आशीष दिया आमीन।

0: प्रिय मैगर कवि लहुद्रा, आजिक कार्यक्रम सुनके अपने हिन कसिन लागल? आशा बा पक्कै फेन आशिषमय लागल हुई। यदि यी कार्यक्रम के लाग अपने थन कौनो प्रश्न जिज्ञासा हो सुझाव कलेसे वस्तह का बाइबल सम्बन्धी कौनो पुस्तक पुस्तिका पाएका ठुली कलेसे एकदम ढुकचुक निमान का पत्रचार करी। हमार ठेगाना बा कार्यक्रम मुक्ति सन्देश, TWR नेपाल, GPO बक्स नम्बर 8975, EPC 2561, काठमाडौँ नेपाल। SMS के लाग मोबाइल नम्बर 98 4705679 ओ NCL के लाग 98 133 00690। वस्तहाँ के फोन नम्बर बा 01559 10 53। यदि अनलाइन मा फेन रेडियो सुना चाहथ्यो भी कहले से हमार वेबसाइट हो www.twrnepal.com म अपना सुन सक्दी।
1: तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज, गर्जन छ सधैं आवाजमै।